0: को बुझे याना जगह बैंक या आधिकारिक प्रोफाइल जगह फलो याना दिशा सुना लिंक चैकेन्य वो छुकी नीति खा सुना छयागु खा वो गनी बालक थुका दिशा वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिशा बामलागु घटना जी के मबिता इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिशा सुना खे थाया ता शंखा जुल धासा बैंक या ता खबर याना दिशा सतर्क जुया दिशा थकी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी संदेश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
2: धार्मिक व सांस्कृतिक सम्पदा नाप सार्वजनिक स्थल त सिचु पिचु याना किपुया पर्यटन प्रबन्धन अभियान सकेसिन ग्वालियर दिश किपु नगरपालिका दुईवटा जाकु देवढोका किपु

0: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर,
1: 9 नम्बर वडा कार्यालय कीर्तिपुर नगरपालिका।
2: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसे या त सनाचो मुदो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिस उमेको विवरण कया बैंक जना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

एफएम 106.6। जो जलपा नमस्ते पिंसुथा नाप्नाप लस्को थु स नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मीडिया ए न्योया न्योवा एफएम सच्यु खोप्टी खो मेगा चडे दुया स ख थौ नेपाल सम्बर चिन्छ छ व पी खुद योलाथो द्वितीय तिथि आइतबार विक्रम सम्बर 2083 साल भाद्र 28 गते अठाइस सन 2026 सेप्टेम्बर 13 तारिख दि ख आदकले नपा न्याना दिस न्योवा रस्ते गान।

0: නෙවා ටෙලිවිසන්.
1: बजार क्षेत्रमा फोहोर जथाभावी नफालौ, डस्टबिनमा फालौ, सभ्य नागरिकको परिचय दियौ। हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर
2: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका।

0: एन्ड्रोइड डाउनलोड गर्नुहोस् नेपा एप।
1: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग फलो याना दिस सुन लिंक च्याकेन ओ छुकिया नीति ख सुना छया हगु ख वो गन उनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बाम लागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुन खे थ या त शंखा जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
3: मठ मन्दिर पार्टी पौवाहरू हाम्रो पहिचान र पुर्खाका अमूल्य सम्पत्ति हुन्। स्वच्छ सफा राखी त्यसको जगेर्ना गरौं। कीर्तिपुर नगरपालिका २वटा कार्यालय देवढोका कीर्तिपुर।
4: थोखर भाषा साहित्य व संस्कृति या स नेवा FM 106.6।

0: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, तोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ,
1: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, किर्तिपुर चारवटाको चम्पा देवी दर्शन गरौं,
0: सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं। किर्तिपुर नगरपालिका चारवटा कार्यालय किर्तिपुर काठमाडौं।
2: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसा हो छि त ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक या कर्मचारी जुगु दाबी या म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित या न दिसा उमेगु विवरण कया बैंक जना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: हाम्रो पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: जोजलपा जिकल्पना महर्जन सालमाठा आरोही नाप संचार कर्मी नेवास नेवा एफएम 106.6 निछिचाची 24 घण्टा प्रसारण जुया चंगुदु www.newafm.com.np लगन याना नाप हाम्रो पात्र वा टाइम्स एप्स पाकी मोबाइल विषय गुगुन थासी नेवा एफएम 106.6 नेनाडी फाई।

0: एफएम 106.6
1: जो जलपा नमस्ते भिंसुथ नाप्नाप लस्कोस थु स नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिडिया ए न्योया न्योया एफएम सच्यु खोप्टी खो मेगा च रेडियो स ख थौ नेपाल सम्बत चिन्छ छ व पी खुद योलाथो द्वितीय तिथि आइतबार विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र 28 गते अठेसे सन 2026 सेप्टेम्बर 13 तारिख दि ख आ न्याना दिस थौ या नेपाल भाषा बुख

0: कथो वह सा सदीन सदी निशे उपेक्षा खालु घुटिन मन चोपी नेपाय जनजातीय नुगलम पिच्छा गुस इल हागुमे संघर्ष पत्ते थत पानान थौ तल्लीला हुस्लु प्वा फुस्लु पी थो जनजाति अने तने तंत्र लिपा थौ थो जाति गणतंत्र या न्योने दो थोई त दुचै के तन थो जाति थगु बलिदान या बस लागु दो थो बलिदान जातीय उन मुक्ति अपुसा थो बलिदान आत्मनिर्णय अधिकार सहित गु जातीय स्वायत्तता अपुसा थो है मगसय स्वां भोग स्वेता चलचंगु ई व्यय अठो इल्ल मिखते गु भै इलं हागुमे छिगु झिगु उपेक्षित जाति अगुमे इलं हागुमे
1: पुनर्जागरण काल्य न संच टक्कले समर्पित म सांस्कृतिक सेना जुजुकाजी रंजित थो छपुमे पासपिंत देछाला दिगुदु र पासपिसा सहर्ष थोइत थाउ नुगाय सबिया जीवंत यागुदु न्यो न्यो इला सातु गुताला मजिला देने मजिला दा बीत की ठुगुई फुत छिपीना ए उपेक्षित जाति दा ए उपेक्षित जाति

0: बस्तान छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ एको विवरण कायम हो। यदि सुनान छुन माध्यम छिके अजाको जानकारी कालादासा ठिका दिसा व छित ठगे या त सनाचो मुदो नाप ब्याङ्क कर्मचारी जुगु दाबी याम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिस उमेको विवरण कया ब्याङ्क नेना दिस सतर्क जुया दिस ठगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ ब्याङ्क पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: हाम्रो पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: जोजुलोपा नमस्ते। नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या नेबोया भाषा साहित्य वा संस्कृति सँग नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो निर्णय दिशा निङ्का दिशा जी हरिवंश आचार्य शुभ।

0: कि जिता छ यगु खसा नेवा नुगदे कि नेवा नुगदे कि
1: जोजलपा जिम्यालामी पूर्णमान महर्जन छिसा निना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिसा नेंका जिसा नेवा जुयागु गर्व याना जिसा

0: Zeynepa.
1: नियम पालक नागरिक नै सभ्य नागरिकको पहिचान हो।
2: बजार क्षेत्रमा सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी बसालौ, दुर्घटनाबाट बचौ र बचाऊ। 9 नम्बर वडा कार्यालय, कृतिपुर नगरपालिका।
3: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकिय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जिके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थया त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थगी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ।

जोजो लपा जी राजेश महाजन नेवा छि नेना चुना दिगुटु नेपाया गौर नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्गा दिशा।

0: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, टोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ, रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चारवटाको चम्पा देवी दर्शन गरौं, सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौ। कीर्तिपुर नगरपालिका, चारवटा कार्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौँ।
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश।
2: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

0: For world class luxury.
1: अले फुक्क भयो जाटा सिडर ला
2: सिडी ढुङ्क ल
1: सँग पर्सनल मोबाइल नम्बर ब्लक याना ला
2: पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
1: अले बैंकेले
2: बुइंके
1: खट या
2: अनछा या माले
1: वला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचेज बियादिस
2: सतर्क बियादिस ठगी पाखे बचेज बियादिस
1: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी छन्
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: हाम्रो सफा के
5: बजार क्षेत्रमा फोहर जथाभावी नफालौ डस्टबिनमा फालौ सभ्य नागरिकको परिचय दियौ हाम्रो कृतिपुर स्वच्छ सफा कृतिपुर
6: 9 नम्बर वडा कार्यालय कृतिपुर नगरपालिका
7: Yeah, stop. You are a good, it's your half-size, stop.

0: अच्छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट ब्याङ्किङ या गोप्य विवरण कायमा हो। यदि सुनान छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिशा हो छि त ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक या कर्मचारी जुगु दाबी या म हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिशा उमेगु विवरण कया बैंक नेना दिशा सतर्क जुया दिशा ठगी पाखे बचे जुया दिशा सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: නෙවා ටෙලිවිසන්.
1: सुन वित्तीय संस्था छिव पासवर्ड पिन आदि गुब्ले काइमको ठोला बैंक हेन काइमको.

0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहित जारी सन्देश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

0: प्लान। सूर्य ज्योति सही प्लान, सही सोचो, सही रोजो।
1: सूर्य ज्योति लाइफ इंश्योरेंस जीवन को लागी।
2: जो जो लकवा जी मदन कृष्ण श्रेष्ठ कनक मीडिया ए निगोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो जीना निना चीना निन्दिसा सुपा।

0: 你话，反正他吃苦不的苦命个，还是要过包子，还过的白人家家子的，还那臭肉，还那肉那个东西，那是够香着呢。啊，天天来米食了，还是没这边臭，家子个汤吃不上，没水果汤吃个的多，干的哒。这一少一年，包子咋的？你还没听一吃，比你个娘的，为什么个多？好的，爱多吧，我好的不多吧？啊，天中汤也过，吃臭个汤多，你白包子的，家啥个阿爸阿妈吃着个里的个，不巴比的也多。还是跟咱们小伙伴们说，明天几个放假课，比说说比你你你咋顶顶咋对对对，而且你放来你说还是而且是我们这啥孤独，一个在老师课上做呢，还是做做了吧，
1: 做做了吧，
0: 做做了吧，这是哪玩意儿？
1: 既然他给你哇，
0: 还是既然是王夫人，
1: 带去的中途，
0: 我这跟咱宝贝洗澡，
1: 啊，洗的了，
0: 我这。阿里个汤要过可多些啦。
1: 嗯，阿出来，到中什么时间嘛？个，那还有那个。
0: 好
1: 着，好着，好着，靠。其他把，其他的把东西木着，地里也毛着了，木啦。其他现在在你阿出，阿爸不啦，阿爸比重要，靠。
0: 嗯嗯。
1: 阿爸走掉了，阿爸死了，你要掉了。啊，不开会中途，俺那在幺三中，幺三在西林那边，俺那没得发现的，俺那会中途干的，你那中途中途。
0: 嗯嗯。
1: 这春天记得阿爸跟金总那个同城，
0: 嗯嗯，
1: 那个大连都什么些计划，今年新年的对对路钱，没啦，
0: 啊，这
1: 个，一个电话的，一个怎么大天电话这个女娃这个不个，来，我那你给他开几个了，你给他开几个了，
0: 啊，
1: 没啦，
0: 你太真，哈哈哈，啊，是的，是
1: 的，你大梦那啥，你干么子个大梦呢？大梦你干这个，
0: 啊是。嗯，
1: 来，这个呢，请大家弄，这个呢，别个不注意啊。啊，我们先了，也没招生，但是也没招生，现在价格特别难做了。
0: 啊是。
1: 但是没得单了，就过过年呢。
0: 单了，拖在几天呀？跟这个白起打三百组，这个班上做兵在不离这三百么组看看。
1: 好
0: 了，他们来啊，我们先搞的不听，比么酷 ，electric jacket 啊，我们来，我们先啊，我
1: 们先那不。你这个他们也没干。
0: 嗯，我们现在地方办了一亩户，
1: 也是
0: 里边
1: 那，
0: 那都是矿业出出。
1: 今天办没了，地方那。
0: 我记得那没干，没干上几上了啊？伢是那上几上干的干，买那些妇女，没好了。
1: 做妇哎。
0: 嗯啊。
1: 酒店这个不出来生意啊，酒店今天没招人没呢。
0: 嗯。
1: 啊，今天那贵人请贵人就介绍走了。
0: 嗯嗯。
1: 这里等，阿来安正地啊，新木家的都去了，新家也在跟新木家的都，
0: 土
1: 地啊，等几下没拉上，那边去老张的，那个不你来处理，那新家个咋处理啊？
0: 好的啦，跟那新买啦，不住的个，你不阿爸的呀，也这个也那，
1: 不住那大家的都就新，不住那我弄不住那大家的都。
0: 好了。
1: 哦，哎，这个好，而且也不是这个也好了。
0: 是。
1: 这个就都，而且呢，现在这个毕竟那么久，这个不能白买。
0: 好。
1: 现在呢，其他人他可也了，也不就靠从其他的过来呢，其他人二的其他人打你点工的，啥子呢？
0: 对
1: 的。就你跟没上的天了，靠这个阿拉靠啥呀？啊，其他我不管啥子弄都，没去去弄都，其他的兵都弄弄都弄得了。
0: 嗯。
1: 不然在干部不弄都。
0: 啊
1: 是，那我也不知道马猪马来这人，那那干部也嘛个。
0: 好，
1: 好了，
0: 嗯，
1: 我留了几村的人，那么多出来就人才了，我也请了几百块钱的薪水呢。
0: 啊是，
1: 不啦，你们那个小村也可以的嘛，你们说，你到时候别说你们了，咱们不也你们了？
0: 嗯，
1: 你别搞别么多，现在这呢，到了什么些好处？这人才干的这么努力的人，在娘你妈的，我没说的，现在没有当，没说的，过年了人家现在一直出个大钱嘛，啥干
0: 了？
1: 不能，几个。几个挨着几下是没呢？几个几台台机器，几个么货？几台多机么货？但没得担心，咱不去个的那边，现在一个天热个，但是有点热个。
0: 嗯嗯。
1: 好了，这个不是头脑不太热个。
0: 比较跟我头脑考个，么了啊？几下是没事了？
1: 啊，考。这这这不是电，有时间就天热个。
0: I was like,
2: पूर्ण बार सके इमारत
0: आजू आजू चाहे कोई गोपाल पोमी जी यू को सॉर्ट ही है चौंग डॉला
2: पार अच्छे से चौला
0: अब बस इसे ना तो सूर्य पूर्ण बार जी माफू
2: खुनी मुखो जादन अलि लिप कारणले थोने
0: उठेमया अलि प्लेमले चाहिँ नो म मुसुला रहुका हजुर या त नि नो म मुसुला रहुका हजुर त्यो चाहिँ जिउसा त्यहाँ देखेन नि असिया मवाला जिन्द हे मवाला ज्ञानले छेतो या नि सिएसु हजुर सुनला रुका मैले पो प्रेरै लिप हे आ मै नो देरुका हजुर त्यो छेन जुटाला छ ज्यादा माउजला हजुर कुटा मत म देख्छ जति त छला मा मला हजुर ए यस्तो गैला र मा मला हजुर आ सुंगा डोली आछ खेल डो यु अर इन फुलो टुका अनि यो फुलो टुका। अलि ग्यास हो मुख अलि छिन झन् छ्याक्क पोसा रुम्ते मुसिम छन् त क्या जि ग्यास हो थन खनि म छ थन ग्यास ह्यासा जसो खबर बि नि गा थ्या थ्या यो तपन यो ग्यास ह्यासा रे जित खबर त का दे ग्यास होल क नि गा ग्यास हे रे सोन ख ग से त्यो त ग्यास होल गा ओले पासे ग्यास ग्यास त त मुगो ग्यास छ गुनि नि न नज वो ख दोस इना दि मरे रु मुल दायो का हजुर
2: हजुर यो न्या न्या क्या ज्या ग्यास हि दुतिन त वहा न हजुर सुन तिम त्यहाँ ग्यास ल अहिले नि मेरो लाइनले खालि ग्यास चेता दिला अब

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा नशा तो नया सत्ता सभा क्या
0: नेवा लहना रेस्टोरेंट हाँ बहा किपू
1: नेवा सभ्यताया जीवन तब खुला संग्रहालय
0: नेवा लहना
1: छक अवश्य दुसा जासानी
2: जोजो लपा जी वैकुण्ठ महेन्द्र मैराथनका साथ जी नेवा टेगो छगु जकस नेवा एफएम 106.6 नेपाल भाषा एकेडेमिया नीति अनक मिडिया या न्यो बोया नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेंका दिस नेना छना जीव सीता सुबै

0: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
1: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
2: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, तोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ,
3: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, किर्तिपुर चारवटाको चम्पा देवी दर्शन गरौं,
2: सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौं। किर्तिपुर नगरपालिका, चारवटा कार्यालय, किर्तिपुर काठमाडौं।
4: नियम पालक नागरिक नै सभ्य नागरिकको पहिचान हो।
5: बजार क्षेत्रमा सडक पेटीबाट हिँड्ने बानी बसालौं, दुर्घटनाबाट बचौं र बचाऊ। 9 नम्बर वडा कार्यालय, कृतपुर नगरपालिका।
6: सामाजिक सञ्जालले बालकको बुझे याना जग्गा बैंक या आधिकारिक प्रोफाइल जग्गा फलो याना दिस सुना लिंक च्याकेन्य वो छुकीय नीति ख सुना छया हगु ख वो गन वनी बालक थुइका दिस वो चागु वेबसाइट या URL चेक याना दिस बामलागु घटना जुके मबित इले बिले थगु पासवर्ड हिला दिस सुना खे थ या त शंका जुल धासा बैंक या त खबर याना दिस सतर्क जुया दिस थकी पाखे बचे जुया दिस सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
7: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
8: जोजलपा जी गायक जोजुकाजी रञ्जित नेपाल भाषा एकेडेमी या नीति अनक मिडिया या नेभोया भाषा साहित्य व संस्कृति सह नेवा FM 106.6 मेगाहर्ज रेडियो न्याना दिसन न्याङ्का दिसन शुभ।

0: पातो जोड्छ नेपालीलाई।
1: सूर्य ज्योति सही प्लान, यो प्लानले प्रिमियम तिरेको 6 गुणा सम्मको कभरेज दिन्छ, अनि प्रिमियम तिर्ने अवधि पश्चात होल लाइफ कभरेज। 70 वर्ष पुगे पश्चात तपाईँले तिर्नु भएको सम्पूर्ण रकम फिर्ता। म त भन्छु आजै लिनुहोस्। तपाई र तपाईँको परिवारको लागि सूर्य ज्योति सही प्लान। सूर्य ज्योति सही प्लान, सही सोचौं सही रोजौं।
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
3: बैंक गुब्ले गुगु अवस्था न छिगु एटीएम मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङ या कोप्य विवरण काइम हो। यदि सुना न छुना माध्यम छिके अजाको जानकारी काला दासा ठिका दिसा वो छिद ठगे या त सनाचोङ दो नाप बैंक कर्मचारी जुगु दाबी याइम हरेक व्यक्ति या मसिका प्रमाणित यान दिसा उमेगु विवरण कया बैंक नेना दिसा सतर्क जुया दिसा ठगी पाखे बचे जुया दिसा। सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश।
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

रोजलपा झिम्या लामी पूर्णमान महर्जन छिस नेना चना डिगुडु नेवा एफएम सचिव खुप्टिखु मेगाहर्ज नेना जिस नेङ्का जिस नेवा जुयागु गर्व याना जिस।

0: जथाभावी रुख नकाटौं, वन जंगल हरियाली जोगाऊ, तोल बस्ती वातावरण सफा राखौं, पर्यावरण बचाऊ,
1: रोमाञ्चक पदयात्रा गरौं, कीर्तिपुर चार वडाको चम्पा देवी दर्शन गरौं,
0: सधैं सबै स्वस्थ भई रमाइलो र खुसियाली जीवन बाँचौ। कीर्तिपुर नगरपालिका, चार वडा कार्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं।
2: सिद्धार्थ बैंक पाकिङ जनहित जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँभरिलाई।

जोजो लपा जी राजेश महाजन नेवा छि नेना चुना दिगुदु नेपाया गौरव नेवा मसिका नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज नेना दिस नेङ्गा दिसा।

0: नेवा जातीय गौरव
1: नेवा संस्कृति नेवा
0: लहना रेस्टुरेन्ट
1: नेवा सभ्यता या जीवन तब खुल्ला संग्रहालय
0: नेवाल महाना
1: छक अवश्य दुसाजा स्वामी अपील अपील अपील सड़क पीति बाटा हिन्ने बानी गरौ दुर्घटना बाटा बचाउ मेन अनुशासन कायम गरौ सभ्यता को परिचय दियौ जथा भावे पार्किंग नगरौ सड़क सधैं सफा राखौ सड़क नियम को पालना गरौ सबै नागरिक को परिचय दियौ दण्ड र जरिमाना बाटा बचाउ सड़क पेटीमा सामान न राखौ बटुवालाई सम्मान गरौ सबै शहर को परिचय दियौ टिपु नगरपालिका महानगरीय प्रहरी वृत्त महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग कीर्तिपुर बजार व्यवस्थापन समाज नेवा एफएम 106.6

ओ नूगु दिन ओ चीगु दिन अवश्य वै अवश्य वै ओ नूगु दिन ओ चीगु दिन अवश्य वै अवश्य वै नेवा सा नेवा एफएम सच वो खुफुती खो नेना दिशा नेंका दिशा जी राम कृष्ण दुआल।

0: नम्बर ब्लक याना
1: ला पर्सनल मोबाइल नम्बर ला उखुनु हे टेलिकम या ज्या खुठी वना ब्लक याना वेट न
0: अले बैंकेले
1: बुइंके
0: खटया
1: अनछा या मालले
0: ओला या माहुने ठाउको मोबाइल नम्बर हिलापुला वा ब्लक जोगु बैंक याता न जानकारी बियादिस अले ठाउको बैंक खाता या जानकारी मेपिनीगु लाटे ठेनीगु पाखे बचेज बियादिस
1: सतर्क बियादिस ठगी पाखे बचेज बियादिस
0: सिद्धार्थ बैंक पाखे जनहिते जारी सन्देश
2: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
3: गौरव यहाँ

0: 你话，反正他秋裤不的裤面个，还是要过包子，还过的白灯盖，加着嘞，还那穿都，还那都那个样子，那是够香着呢。啊，天天那面食了，还是没这边一穿，加着个穿起不像，毛线裤穿起个地道，管你的，这一少一男，不是咋的？你还别听，去比你个娘嘞，为什么个都好的爱多吧，我好的不多吧？啊，天都，同样个穿起土个穿都，你爸不咋的？伢啥个阿爸帮我去到屋里打个不巴闭的丫头。还是在那边上了，还是没什么，而且几个风凉好，比说说比你你你咋叮叮咋对对对，而且什么风来呢？是还是而且什么妹子啥孤独，一个在老师哥身子呢？还是坐坐了吧？
1: 坐坐了吧？
0: 坐坐了吧？这是哪玩的哦？
1: 既然他给你哇？
0: 还是既然是王夫人？
1: 带去的中毒。
0: 还是越南宝贝去了？
1: 啊，去了。
0: 还是。啊，那个汤要给我喝多些。
1: 嗯，阿出来，到中什么时间嘛？个，那还是那个。
0: 好
1: 着好着，
0: 靠。
1: 伢去阿爸屋里，伢去其他的八人子，莫说比你也毛着了，莫了。其他挨着在那阿出，阿爸不阿爸比重要，靠。
0: 嗯嗯。
1: 阿爸住了了，阿爸不吃的那要了了。啊，不开胃中毒，阿那在幺三中，阿那在西林那在阿那没得啥开的，阿那胃中毒个，伢那胃中毒。
0: 嗯嗯。
1: तर फन्दै जिद अबा किन किन जोंदो गथिन छ अ नगन दारे न समस्या समस्या छ वा सिन्या सिलिन्डर ते ते रुछे मखला
0: हजुर
1: अ या गाउ खत जिगे जम्मा ताठे जाउ खत जिगे न्यू जगे थुका ल अ उन निगला खाल जिंगला निगला खाल जिंगला
0: हजुर जिथा हजुर हजुर
1: जि तामो ने था जि जिगे ग्यास मन त गन तामो न तामो नि गाटा
0: हजुर
1: मित्र थामे यी मुखका
0: गुमेशिया देवा भ्यालाई मुखु ए जुली याना न तस्को ए छ छ
1: जिरा भामला देवाला ला
0: जिजन मगा मगा सा जिसला आ नसना हा जिसका रगा मैनेजर फुनी मखला
1: छुपु
0: आ
1: जिउ त जुगल बछु राख्छ नि आ जिउ त जिन मोटो त महिना आ जिथनु कुए चाहिँ छै कुए चाहिँ जे जस जुल चाहिँ अले अन चाहिँ जि आ सिमु गाडीहरु जिल्ला सिं ज्याया जले सिमु गाडीहरु
0: हजुर
1: हुँ ज्याया दे जिया पनि लाछ नाप्ने छ लकडाउन लकडाउन
0: हजुर हजुर
1: नाका पनि ले जुलनी
0: हजुर
1: हजुर ले सिं जग्गा जति दे हजुर
0: खनि ला गना गना सिमाला फुटु देका नि पनि पापा तया या जके याद न
1: दुन देका दे दु जे सिं दुन नै दुन देका दे दु
0: खला
1: अ ए जी गाको आछ या बसिर गाय खला
0: हजुर
1: जे काटियो दु आछ ला ग्यास के पिसन न मुजो जे जिक गुदा मालमा
0: ख
1: ए जदै ने आछ ला दे तको या ला या मुजो खठौ छिरा डक्ले न छिरा दे हरेक छिरे दे राजी दे मुले हादु नि
0: एकदम
1: कमिसन नि खेल न ख के ला खसा आछ जब भुगे से आछ न दु म सिलिन्डर सिका त बि इन द जोन जोन दु जोन दु
0: हजुर
1: ने कारबाई दु न दु
0: हजुर
1: र ए बिन्दा माटु मलाय जने धुराने कारबाई या माका
0: ख
1: ल व गोरिला छि जन्दे दे लामु चुला गु दिन थालो बय छिन छि छि पाखे दे दिया दुले
0: हजुर
1: बुला नि मरे का छतु या या खे दि म कि मसा तादो बिस्कुट ने मल त तालम बई ने मल म नि बिकल पे मरो एले दे नि तरो समस्या ख थ के दे सरकार ने एकदम गम्भीर जारे दै न्यान मारे थ म सधै सधै म त महसुल चाहिँ कमी न चाहिँ काछिन चाहिँ हिद्रे छुगा थाके म सरकार
0: ओ न
1: जिगे आएर ग्यास मर्ने जिगे चिठा देखि चिज चिज मखो झिठा दु चिज मखो त म त्यो दासिन त बजी पछि घटना नै चिन्छ नि गे फ्यार नहरका दासै जुरे जो होला होला बिकल जो थोन भने जो होला
0: बिकल गयो छौ न खका
1: मलाई ग्यास मर्छ होला अ ख ख 30% ध्यान यो चाहिँ जुरे जो होला
0: हजुर हजुर हजुर सुभादु हजुर बेका छ किरण खाती नेवा हजुर साखु पार्टीलाई हेर्ने दिला बेका नबेका यागु नुग खताया दिला थे चिन छिपिनीगु नुग खताया दिपैजीको फोन ल्याए ख पिस सो पिनी नि नि चार तिन तिन चार दुई दुई दुई अथे न फोन लाइने हेक्न सु भाजु अथे सु मेज झागु दु बेका या त लस्को सञ्चना हजुर जजु लप्पा
2: जजु लप्पा
0: जजु लप्पा छिस न मान्देउ गोपाल भोमिजु
2: पूर्ण बार सके इमा
0: हजुर हजुर गयो गोपाल भमी जी यु को सर्थ ये चौडला
2: अ पा आथे आथे चौडला
0: अ बसे नाचो सुरे पूर्ण बार जी माफु
2: खुनी मुखो जाँदैन अहिले लिपो कारणले खोने उठेमा या अहिले ब्लेमले चाहिँ ढिलो भयो मुस्युलर हल्का यहाँ त ढिलो भयो मुस्युलर हल्का अहिले ग्यास हो मुख अहिले छिन छक्क पोसल रुम्पे मुसिम छन् क्या जि ग्यास हो थन खनि म छ थन ग्यास ह्यासा जस खबर बि नि गा थ्या थ्या यो तपन यो ग्यास ह्यासा रे जित खबर त का दे ग्यास होल कन नि गा ग्यास हे रे सोना ख गा से त्यो ग्यास होल गा ओले ताले गा ग्यास त त मुगो ग्यास छ दे नि नि नज वो ख दोस इना दि मरे रु मुल दायो गा
0: हजुर
2: हजुर यो न्या न्या क्या ज्या ग्यास हि दुटिन त गा वहा न
0: हजुर हिसाब थोनी रोका होटल पसल अलग सिलिन्डर मेरो पट्टि बिमल जठी पिन्डा छेन्दा पिन्डा मेरो पिन्डा अलगै ना बिमल सरकार यहाँ म फोलो छुन मरो कमिना जिल्ला छुइना जे यहाँ